0: Salaam, no, to Sami Sharma Salaam, no, I mean, Shabri Shah and Jonathan, Shabri to tell you about the Hariji, I mean, Shah, dear, I interviewed with him to take for our religion. तत्काल को लाई इच्छी को मतलब बहुत पर घाटा उपस्थित इच्छी तो उपस्थित हो गई थी
1: अब तो समय में सही जो आखिर में पड़ेगा पार्वनी का रोल मुंशा है ना वहाँ

ना कि तुम्हें जो कोई यहाँ ऐसा ना कि जो रास्ता यहाँ सिटी तो में रास्ता नहीं हो या फिर वो बहुत बढ़िया चीज हो तो फिर बहुत बता रेडियो को बनाया फिर तुम्हारे बेटा को साथ में कहा

0: que vous pouvez vous en et vous il y a le secret de la famille de famille de mes beaucoup coulés dans la partie où il est parti vous savez dans la forêt qui l'on met le temps d'une partie de sa salle d'oxygène pour le calage de l'argent
1: là pour le calage de l'oxygène vous en avez pas avis les corps pour le risque de l'île à vous en avez pas sans être pas pour le calage de santé à vous les
0: faire oui pour le calage de l'oxygène जमीन में बैठक करते हैं पानी को जैसे खूब आवाज़ जमीन पानी को मोर सुखने और जमीन को मुड़ी रूख का बिजली का पोल हर उठाल के नहीं जैसा लक्षण हमें देखने सकते हैं
1: पहले तो इस वंते धान पर की वालों बसे को जो उठाने जा सके ना
0: जिस वाले का है उनसा पहले तो इस वंते देखियो मने तुरंत इस सुरक्षित स्थान में गई आने को सब
1: नॉर्गा सरसा में निकालने पर इतने के लिए मिलन
0: इस तो कॉल्ड जो जुट के अपने गोल मुद्दे घरका सरसामान निकाल्ने तर्फ लाग्नु भनेको जोखिम बढाउनु हो सामानको लोभ गरेर अनुकरण गर्न थाल्नु भयो भने पहिलोका कारण

संतान दान करे आज दान करती को दान संकास करती को उत्तर करती को सूचना दी हमारी तरह दान करेगा अपने ग्रहण

ये भी तुम्हारा दिन सुख करने देखो और हमें धर्म नहीं था मैं भी चाहिए।

मुक्त रूप में सक्षम मदर पेज निकाल को था। बाकी यूनेस्को को और प्राइम इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा चर्चित मजा संदेश

चले पुरा संध्या सभा 6 बजे हमारा संदेश में अपना हमारा स्वागत दान कुरा उत्पादित हमारा संदेश पर दिया प्रसाद के फन राजपुर उसे प्रसन्न प्रसाद विजुबा हमारा संदेश पर पूरी जाने मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से बास परिचालन पथपट्टा रूप 5 बास कड़ी मे कोशी पैसा सरकारी अंतर कार्यक्रम निरीक्षक मनाने करना ठीक आचरण तैयार बांसवाड़ी नगर पालिका से सम्मानित पर्याटक में सामुदायिक मनाली प्रभावबंद नागरिक पैनी करा सभापति लाली छाने का निर्देशन बांसवाड़ी नगर पालिका 4 बठवाटार में कोटे कोशी पैसा प्रभावित कला स्तरीय राहत संकलन देखी बठवाटार हरपाल कुमारी चौधरी प्रभारीमा विलम्ब 98,955 रूपया नगद 8 क्विंटल 30 किलो चाउ 16 किलो गहू 21 किलो दाल 11 किलो मांगो 1 किलो पिपल संकलन मिलवा राहत संकलन प्रक्रम संस्था स्थानीय नागरिक संस्कृत रूप में सेवकर संकलित राहत समाज तथा रकमवटा कार्यालय में पुजेगा मात्र 5 वटा कार्यालय कोटे कोशी प्रभावित नागरिक का सेवकर उपलब्ध कराइना प्रखंड बाल कुमारी चौधरी चांदी या बीच आशोर बांसवाड़ी नगर पालिका वा नंबर 5 बांसवाड़ी गांव के स्थानीय पासी राहत सामग्री संकलन कर पीड़ा तिब्बत में प्रणव सहयोग करना उद्देश्य में कांग्रेस तथा खाद्य सहयोग जुटे पीटा बड़ा महीना चौधरी के अनुसार संकलन का क्रम कुल 6 क्विंटल 88 किलो चाउल 12.5 किलो दाल 4 किलो मांगो 20,395 रूपया नगद प्राप्त विभाग स्थानीय वासुदा संकलित नगद तथा खाद्यान्न सामग्री पैसा प्रभावित को उत्तर तथा स्थापना करा पूरा कार्य में हस्तांतरण करना प्रकट चौधरी जानकारी बांसवाड़ी नगर पालिका में सहकारी संस्था का पदाधिकारी व्यवस्थापक तथा कर्मचारी अंतरक्रिया तथा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम मिंचल बांसवाड़ी नगर पालिका का नगर स्तरीय सहकारी संचार का समन्वय बांसवाड़ी नगर पालिका उपलब्धिया जिला सहकारी संघ का संयुक्त आयोजना में उप कार्यक्रम संचालन कई को जिला सहकारी संघ लिमिटेड का अध्यक्ष नवराज ठकर का अध्यक्षता तथा बांसवाड़ी नगर पालिका का नगर प्रमुख खड़का का प्रमुख अतिथिता में कार्यक्रम निचलन कार्यक्रम को संबोधन करते नगर प्रमुख खड़का गांव गांव बचत करना पानी विकास करा एक अन्न परिवार कम सहूलियत गर्म खर्च उपलब्ध कराई सरकार से

0: हमारे पशुक्षण व्यक्तिगत स्वास्थ्य सभी सुधार बालिकाओं को एक दिवसीय प्रकार का सहयोग सीकर समय सुधार विद्यालय का प्रधानाध्यापक और शिवपुरा
1: वहाँ अपनो नेपाली मूल का नागरिक रूप में कति औरजना
0: हरियाणा देवत निभाकर आफ्नो संघर्ष एक ठाउँमा से स्थापित गरेर पक्कै राष्ट्रीय समाचार सुन्न हाम्रो सन्देशको समय भए लागल बा हाम्रो सन्देश सुनि नसे पहिला मुख्य मुख्य सन्देश चाहिँ खेला मानसको चार पटकर्ता हो पाँच सौ पाँच कोडी काममा भोटेपछि पहिला प्रभावित गरेर पुरा स्तरीय हात संकलन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति कपिल लामी छाने विपदमा पर्वत नागरिक कपिलको आफ्नो संरक्षित पैठ सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक ठाउँमा तुच्छ टिप्पणी गरेर पार्टी कम्तीमा निर्देशन गरेर कार्पिया सात बजे नेपाली भाषा हमार सन्देश पार्टी तब समग्र समाचार कक्षका सत्य प्राथमिक सुन्दरी गौरी शङ्कर क्यामरा सङ्ग मोहन कुमार रेडियो पूर्वा सुन्दी रवि जय गोपाल।

इसने मेरे भैया की सभी तक म्यूजिक वीडियो रेडर कर रखी। हुकुम कर दीजिए यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना।

0: पुगाता थोड़ी सरला पुरी मेकाजुल चटंसे तमातिन बस्ता को संभव न रहे को मौसम गीत बिन महासल जानकारी दिल भायो
1: हम कोशिश कर सकते हैं कि लुम्बिनी प्रदेश में साधन पर दावत तरह का नहीं ना सिर्फ कोशिश कर सकते हैं हम सिक्का बनाया को सब कोशिश मधेश बारमती लोकन की तरफ इसका थोड़ा हिस्सा नहीं है तथा लुम्बिनी पड़ा नहीं सिर्फ कोशिश कर सकते हैं इस समय वक्त में बहुत मस्त बन रहे को सब मधेश तो इस लगा कोशिश बारमती पर इसका पाई दुआ कर के इस समय तथा लुकन की लुम्बिनी और सिर्फ कोशिश कर सकते पाई दुआ को थोड़ी स्थान हमें जरूर बताएं सिर्फ मधेश तो मोबाइल होने संभावना रही है सब बारमती को अपना बारमती प्रदेश को पानी होगा तो सत्रह प्रदेश तथा कुछ अदालत प्रदेश का पानी होगा तो एक दिन का पानी वर्षा को भी मार्ग देखेंगे
0: साझा खबरमा अब खेल खबर देश भरका तिनसे भन्दा बढी विद्यालयको सहभागितामा अन्तर विद्यालय अठार वर्ष मुनिको छात्र तथा छात्रा राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेल भोलिबाट सुरु हुनेछ। नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता साथै पुरस्कार विभिन्न खेल मैदानमा आयोजना हुनेछ। प्रतिस्तरीय छनौट खेल भोलिबाट एक साथ सुरु हुनेछ। कोशी प्रदेशमा विराटनगर इटहरी मधेसमा लालबन्दी सिमरा र रौतहर बागमतीमा चितौन र काठमाडौँ गण्डकीमा पोखरा र गोर्खा लुम्बिनीमा गोराही नेपालगञ्ज र भुटवल तथा सुदूरपश्चिममा धनगढीमा खेल सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरको फाइनल असोज 16 गते काठमाडौँमा हुनेछ।

0: संपत्ति सही जानकारी उपलब्ध कराओ। सरकारों को प्रकार खरीद कारण करो
1: बालिकाओं को सपना जगाओ। शिक्षित सक्षम जिम्मेवार पुस्तक निर्माण करो। जनहित का लागि महिला सशक्तिकरण स्कूल के उसी सामुदायिक रेडियो उदयपुर सीआईएन सामाजिक रूपान्तरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन ले प्लेटफर्ममा तयार पारेको साझा खबर सुन्नुहुन्छ।

नहीं है, लेकिन मैं सबकी किसी समय भी नहीं आई मेरी पूरे व्यवहार को सब पूरा खराब हो नहीं सकी और मेरे प्रकार महसूस हुआ मुझे प्रदर्शन जो मेरा मुझे जानकारी है मुझे नीचे ही पूर्वक स्वीकार करी।

सारा पुलिस सचिव नहीं है, पुलिस को संभावित कार्रवाई के बारे में सूचना दी जाते अनेक जिला में छापा मारिने नेशनल जहां प्रश्न खतरा उन्हें मिनी को काम में खुश सकते तत्काल में संभव होने समय जीवन भर कठोर परिश्रम करें भैरन बढ़ी रहती